जाम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइट छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यंग इट्स